0: भी? मुर्गा भी?
1: मौसम कैसा है?
2: We have a meditation room complete with sound system.
3: अच्छा, मछली?
0: Sardine?
2: Yes, of course.